0: अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है, हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ये देखना बहुत जरूरी है, पब्लिक ही चाहता है ना। वी आर गोइंग टू बी सक्सेस। बीजेपी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद।
1: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी। प्रेशर कांट बी लाइक दैट दैट 2022 एमपी शुड गो। समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड गहरा है, दाल में कुछ काला है।
2: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
3: सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को। और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
4: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
5: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
4: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
2: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called, but one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
6: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
7: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के, मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी।
6: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. Two people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
8: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मल इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने एक रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया।
9: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
8: है, शेष है उनको लाकर के पूछताछ किया जाना।
6: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.
2: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue. And the police have now registered a case against three named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
10: Clashes. Vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
11: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपके लगते, हालांकि विस्फोट भी हो रहा है। आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था। पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक तो आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है।
10: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
12: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge, and right now the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire, and the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
10: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
13: Group of criminals mobilized a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
10: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village, with the villagers demanding yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

0: Let's now take you to France. Prime Minister Narendra Modi kicked off his crucial six-day Europe tour in Nice, a visit that's likely to take an already strong partnership, that is, strategic partnership between India and France, to the next level. Prime Minister Modi held bilateral talks with French President Emmanuel Macron, and the two leaders jointly inaugurated Bharat Innovates 2026, where Prime Minister Modi highlighted the depth of India-France ties, calling the relationship a special partnership built on shared vision, conviction and innovation. Modi said both nations are working together to find solutions to global challenges, with cooperation spanning areas from security to sustainability. The Prime Minister also underlined India's growing innovation ecosystem, saying the country's youth are shaping its future. He described India as a breeding ground for innovators, home to the world's third largest startup ecosystem, and said the nation has immense potential in artificial intelligence, which is being used to transform lives and create solutions for humanity. French President Emmanuel Macron called it a huge honour to welcome Modi and congratulated him on his record tenure as Prime Minister. Macron praised India's focus on research and innovation, saying the country is at the forefront of global technological progress. He also cited the Chandrayaan 3 mission as a testament to India's capabilities. Prime Minister Modi's visit comes as India and France seek to further strengthen their special global strategic partnership with collaborations in AI, semiconductors, clean technology and the wider innovation ecosystem.
1: Innovation is in India's DNA. Hazaro varson se Bharat ne apne knowledge aur innovation se दुनिया को नई दिशा दी है. मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है. भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं. मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
2: Why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation. And if I only had to mention the one example on what you can do, airspace is the perfect example. With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon, that was led in a record time by ISRO, with cost, with record cost, is demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today, not only a country promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technologies. So on the other side, I would like also to persuade the VCs, investors and entrepreneurs who are here in France and in particular in Nice today with us of what is France.
3: The two leaders addressed a gathering that comprised about 120 Indian deep tech startups as well as innovators and top technology institutions and close to 500 investors, venture capitalists and business leaders from France, from India and indeed from around the world. The Bharat Innovates event, as you probably know, is a platform to showcase the best of Indian deep tech companies and startups to the global audience. And today's event had representatives from the sectors of artificial intelligence, semiconductors, advanced computing, medtech, agritech, defense, space, renewable energy, among others. After addressing the event, both leaders walked through the exhibition and interacted with the innovators who had their innovations and solutions on display.
0: Salman Khan stole the spotlight at Aamir Khan Productions' 25th year celebration with his striking new look. Sporting a clean-shaven head and an all-black outfit, the superstar sparked buzz on social media, leaving fans curious about the reason behind this transformation. Leaving you with that report.

आज डिफेंस और स्पेस इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madan Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: ये पॉलिटिकल पार्टी है
4: डाउन है
2: वो रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इसे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी अभी भी मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है All the 20 members are with there. We want to see, under the leadership of the Chief Minister of West Bengal, naya jo khela shuru hua hai, jisam joint government, means hamara double engine ka sarkar, ek saath milke, kandha mein kandha milake kaam karne chahta hai, for the interest of the nation, for the interest of the public. Ye dekhna bahut zaruri hai, public hi chahta hai. Hai na? We are going to be success. बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट की मेंबर है आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी Pressure can't be like that 2022 MP should go.

0: So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action or the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
1: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है, यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है।

0: The TMC rebellion has taken a major turn. We're shifting our focus to the domestic arena now. The breakaway faction has formally split from the party and announced a new political alignment. Rebel MP Kakoli Ghosh Dostidar announced that the faction is merging with the NCPI and will support the NDA. She also claimed that 20 rebel MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla and sought permission to sit separately. Senior leader Shrudeep Bondopadhyay confirmed the merger, saying the group has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madhun Mitro accused that has joined the NCPI and that the courts will decide who represents the real TMC indeed. The announcement came after rebel MPs met Speaker Om Birla and Union Minister Bhupendra Yadav. The Mamta camp hit back strongly. TMC MLA Madhun Mitro accused the rebels of winning on Mamta Banerjee's name, called their actions unfair and claimed they do not have the numbers. He said any decision on moving court would be taken by Mamta Banerjee.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ
3: कहाँ की पार्टी है दादा
4: डाउन करो ना दादा
2: एक पॉलिटिकल पार्टी है
4: जी डाउन है
2: वो रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है
4: जी जी
2: तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ
3: टीएमसी रहेगी वो अलग है आप
2: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
3: होगा क्लेम करेंगे
5: इससे मिला हम लोग क्या नाम है स्पीकर से उनको चिट्ठी दे दिया है ब्लॉक मांगा है ब्लॉक हमको मिल जाएगा पार्टी अभी भी मिल जाएगा वेरी नाइस डिस्कशन विथ हिम एंड वेरी सक्सेसफुल बहुत अच्छा है ऑल द 20 मेंबर्स आर विद देयर वी वांट टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नया जो खेला शुरू हुआ है जी हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कंधा में कंधा मिला के काम करने चाहता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये देखना बहुत जरूरी है पब्लिक ही चाहता है ना वी आर गोइंग टू बी सक्सेस बीजेपी हमको मदद मांगेगा हम देगा मदद
6: फर्स्ट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं आई स्ट्रांगली कंडेम देयर एटीट्यूड बिकॉज दे ओन द इलेक्शन बाय यूजिंग द फोटो एंड नेम ऑफ ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेचरी प्रेशर कांट बी लाइक दैट द 2022 एमपी शुड गो समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड गहरा है दाल में कुछ काला है
0: The Trinamool Congress has taken its battle against rebel MPs directly to the Lok Sabha Speaker. As Mamata Banerjee's party moves to prevent any breakaway faction from gaining official recognition. In a key development, TMC MPs Kirti Azad and Shagurika Ghosh visited Lok Sabha Speaker Om Birla's residence and submitted a letter from Abhishek Banerjee. In the letter, Abhishek Banerjee urged the Speaker not to grant recognition facilities or separate status to any rebel group. Citing the anti-defection law, he argued that political splits no longer enjoy legal protection and warned that MPs attempting to function as a separate faction could face disqualification. The TMC leader also requested that the party's official leadership be heard before any claim by a rebel group is considered in what is being seen as Mamata Banerjee's latest bid to contain the very rebellion.
7: Supreme Court के constitutional bench में ये कहा गया है शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे।
8: हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
3: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
8: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।
0: It's a heartbreaking case of alleged medical negligence. At least that's what it's being called. But one can also term it as a crime. It has emerged from AIIMS Bhopal, where a 3-year-old blood cancer patient lost his life after being mistakenly administered a hazardous chemical instead. Months after the incident, police have now registered an FIR based on findings of an internal inquiry. Take a look at this report.
9: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
10: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम, और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उन्होंने लगा दी।
9: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. 2 people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
11: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था, तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी। बाद में हमने एक रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है।
12: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई
11: है, शेष है उनको लाकर के पूछताछ किया जाना।
9: द ट्रेजिक इंसिडेंट हैज वंस अगेन रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अबाउट पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल्स इन वन ऑफ द कंट्रीज प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun. This incident took place over a petty water dispute issue, and the police have now registered a case against 3 named accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. Let us take a look at this detailed report.
13: Vandalism, arson and vehicles set on fire. What began as a petty water dispute over irrigation and land quarrel resulted into a full-blown war claiming the life of an innocent. An angry mob barged into the house of the accused and set it on fire.
14: किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आपके लपटे हालांकि विस्फोट भी हो रहा है आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर पहले पथराव भी किया था पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक तो आपको दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आरोपी के घर को आके हवाले कर दिया गया है
13: Police have registered a case against three accused and 25 unidentified individuals in connection with the incident. The situation in the village has remained tense.
15: You can see there's complete silence in the village after police resorted to charge. And right now, the police has also surrounded the area completely. The fire brigade, the fire tenders can be seen over here to douse the fire. And the situation remains tense. However, according to the police personnel, the situation is under control.
13: Police personnel are deployed in the area and are monitoring the situation to prevent any further escalation. As a precautionary measure, internet has also been suspended in the neighboring area. A large police contingent has been deployed in an effort to prevent further escalation. Local politicians claim that a group of local goons barged into the house of a Hindu and hacked him to death.
16: Group of criminals mob-lynched a young man of the village who was my party worker as well. They entered his house and killed him. It was a cold-blooded murder. And the youth and the people in this area are agitated.
13: According to police, Vinod Kumar and his family had an ongoing dispute with their neighbor, Imtiaz, over water supply in their fields. After the crime, government officials swung into action and razed the house of the accused with bulldozer. In view of the communal sensitivity of the incident, the administration has placed the area on high alert. Personnel from multiple police stations have been deployed in and around the village with the villagers demanding Yogi-style bulldozer justice. With Tina Sahu and Ankit Sharma in Dehradun, Bureau Report, India Today.

भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विथ इंडिया। मैं अगले तीन दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम ज्वाइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। यही भारत का दृष्टिकोण है। यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं, युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है।

0: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Schwarber
2: to right field, and it will lead.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है. आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो. और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन. साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है. यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है. हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय. दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी. साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है. इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है. यही भारत इनोवेट्स की भावना है.

0: भारत इनोवेट्स, भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले तीन दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: Is in India's DNA. Hajaro varso se Bharat ne apne knowledge aur innovation se duniya ko nayi disha di hai. Mathematics se lekar astronomy tak, medicine se lekar ke yoga tak, Bharat ka yogdan sampurna manavta ki pragati ka aadhar raha hai. आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है. साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं. युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है. पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है. और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है. आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है. साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है.
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
6: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: LIC, हर पल आपके साथ.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: And at the top of this hour, we're getting some breaking news. This is regarding the TMC rebellion. Now, TMC rebels are now eyeing complete takeover of the party. TMC rebel MP Arup speaks to India Today. Rebels lay claim to TMC name and also the symbol. So Arup Chakraborty, while speaking with India Today, claimed that they will be taking the TMC name and symbol as well. So TMC rebels' big message to Mamata Banerjee's loyalists that they will back NDA for the women's bill, and the rebel TMC group now moves to merge with the NCPI. In fact, the group has already announced that it will be merging with the NCPI, which is the Nationalist Citizens Party of India. Listen in to what TMC MP, the rebel TMC MP Arup Chakraborty said.
1: मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
2: हम सांसद है भाई. पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है. हमको अफसोस है कि ज्योति बसु बामफ्रंट का जो चीफ मिनिस्टर था, 35 साल बर्बाद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में. दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है, स्टेट को नहीं मिलता है. वो 35 साल चिल्लाया और ममता दी 15 साल चिल्लाया. 50 साल बंगाल की स्टेट या सेंट्रल पीछे हट रहा है.
1: आपके लिए
2: इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दो सरकार को एक साथ चलाने का कोशिश करता है.
1: कब फैसला कब लिया आपने, क्या नतीजे जब आ गए उसके बाद आप लोगों ने फैसला ले लिया?
2: जब जब किसी को बिना पूछ के जब इसको हटा दिया, इसको डॉक्टर काकुली जी, ये क्या खेल है भाई? ये बच्चे का खेल है. आज तुमको बैठा दिया, किसी से नबात किया, कल उसको बैठा दिया. बच्चे का खेल है.
0: So that was the rebel TMC MP Arup Chakraborty speaking exclusively to India Today. And now what it seems like that the TMC rebels are now eyeing the complete takeover of the party TMC. While speaking to India Today, he laid claim to TMC's name, symbol. Remember, the rebel MPs have been claiming the group which is being led by Kakoli Ghosh Dastidar. They have been claiming that they have the majority of the MPs are with them. Over two-third MPs are with them, and hence they are the real TMC. They are the asli TMC. And in fact, a merger was also announced by this breakaway faction. They announced that they are merging with the NCPI. Now, NCPI is a very little known party which has contested just one election in Tripura, that too against the TMC. Let's once again listen in to what Arup Chakraborty said while speaking to India Today.
1: मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
2: हम सांसद है भाई. पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है. हमको अफसोस है कि ज्योति बसु बामफ्रंट

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: And talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
7: दर्द दर्द दिखाने का काम भी हम लोग शुरू

0: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
4: आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है।

0: a burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Energy and Trinamool Congress. So this is basically a treachery. Pressure can't be like that, that 2022 MP should go. Something complicated and gehra hai. Dal mein kuch kala hai.
7: Nationalist Citizens Party. ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ.
8: कहाँ की पार्टी है दादा?
9: डाउन करो ना दादा.
7: एक पॉलिटिकल पार्टी है.
9: जी. अरे डाउन है, डाउन.
7: और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है.
9: जी जी.
7: तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ.
8: टीएमसी रहेगी, वो अलग है.
7: वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड
8: होगा.
10: मैं आपको बागी कहूं या एनपीसीआई का सांसद कहूं, क्या अब आप क्या हैं?
11: हम सांसद है भाई. पब्लिक हमको चुनाव में लाया काम करने के लिए, हम काम करने के लिए तैयार है. हमको अफसोस है जी, ज्योति बोसु बामफ्रंट का जो चीफ मिनिस्टर था 35 साल बर्बाद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में. दिल्ली नहीं देता है, बंगाल को नहीं मिलता है, सरकार नहीं देता है, स्टेट को नहीं मिलता है. वो 35 साल चिल्लाया और ममता दी 15 साल चिल्लाया. 50 साल बंगाल की स्टेट या सेंट्रल पीछे हट रहा है.
10: आपके लिए
11: इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दो सरकार को एक साथ चलाने का कोशिश करता है.
10: कब फैसला कब लिया आपने, क्या नतीजे जब आ गए उसके बाद आप लोगों ने फैसला ले लिया?
11: जब किसी को बिना पूछ के जब इसको हटा दिया, इसको डॉक्टर काकुली जी, ये क्या खेल है भाई? ये की बच्चे का खेल है. आज तुमको बैठा दिया, किसी से नबात किया, कल उसको बैठा दिया, ये बच्चे का खेल है.
12: India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: आज डिफेंस और स्पेस इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है।
1: बड़ा खाना खुला हुआ था, जमीन दिए सबको देना चालू कर दिया हम लोग, एक इलीगल घुसपैठिया इसको चुन चुन के दर दर दिखाने का काम भी हम लोग शुरू कर दिया। बारह होली स्टेशन,

0: A shocking case of medical negligence has come to light from AIIMS Bhopal. Life of a 3-year-old Sarthak snuffed out. The infant lost his life in December 2025 when a nurse employed at the hospital injected a hazardous chemical to the child. A clear case of medical negligence. 3-year-old Sarthak Yadav, who was undergoing treatment for blood cancer at the prestigious hospital, died when the nurse injected formalin into his IV line. The child was admitted to the pediatric ward on December 15th. He was scheduled for a bone marrow biopsy. The family claims on December 17th morning, a nursing officer picked up a syringe marked F containing formalin, which was kept for the biopsy, and used it to flush the child's blocked IV line without verification.
1: मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है. तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है. मैंने पेमेंट तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के. मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उन्होंने लगा दी.
0: The cops have now filed an official complaint on the basis of an internal inquiry report. Two people have been booked so far. One has been booked for causing death by negligence and the other for negligent handling of poisonous substance.
2: वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मलिन इंजेक्शन वहां लाके रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था. उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था. तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जांच हुई थी. बाद में हमने रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है.
3: वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है.
2: अभी शेष है, उनको लाकर के पूछताछ किया जा रहा है.
0: The tragic incident has once again raised serious questions about patient safety and protocols in one of the country's premier medical institutes. Bureau Report, India Today.

0: And with rebel TMC Lok Sabha MPs announcing their merger with the NCPA, I beg your pardon, with the NCPI, all eyes that are now on their next move. Arup Chakraborty, who is among the rebels, told India Today that the group will stake claim over the TMC. The MP added that it will support the NDA for Bengal's development and betterment. Arup then lashed out at Mamata Banerjee, saying that she ran the party as if it were her personal property. He also drew a comparison between Kakoli Ghosh and Mamata Banerjee, claiming that the rebel camp believes Kakoli Ghosh worked much more than her. Both sides have drawn knives and are launching scathing attacks against each other. Mamata Banerjee camp, where Mahua Moitra slammed Sudeep Bandyopadhyay, saying the mask and his wig both have come off, and she called him a gaddar. So let's decode the strategy of both the camps against each other. The rebels, who are projecting themselves as the real TMC, while the Mamata camp is projecting Mamata as the party's unchallenged leader. The rebels will show their strength through their MP numbers, while the Mamata camp will isolate the rebels as a breakaway group.
1: ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं. मेरा सवाल ये है कि अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बनती तो क्या फिर भी आप ये सोचते कि आप अलग होंगे?
2: तीन बार बना था भाई, ये चौथा बार बन जाता
1: तब भी आप अलग हो जाते
2: क्या?
1: तब भी आप अलग हो जाते जो आज आप?
2: आखिर कैसे बताएगा? ओपोजिशन आता तो बोलता, ओपोजिशन आया नहीं, उसका पहले ही भगा दिया उन लोग, जनता भगा दिया. हाटो साला तुम लोग, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट फिटेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल, गो एट. जैसा ज्योति बोस लोग सीपीएम को हटाया, हम लोग को फिर हटा दिया.
1: क्या अब आगे का किया? आगे क्या आप एनडीए को समर्थन कर रहे हैं?
2: हम लोग कोशिश करेगा पब्लिक का काम कैसे किया जाएगा, इसीलिए हम चाहता है ज्वाइंट सरकार, दोनों इंजन क्या काम करता है सेंट्रल
1: इंस्टीट्यूट. कितने सांसद आप लोग साथ में?
2: क्या
1: कितने सांसद, कितने लोग, कितने सांसद एक साथ में?
2: सभी हम लोग को साथ में.
1: महुआ मोइत्रा भी है?
2: सब है यार.
1: महुआ मोइत्रा भी इस तरह
2: सब सपोर्ट.
1: शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद,
2: अरे सब सपोर्ट.

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने

0: ले जाएंगे, सुकून एंड छावा. शी प्लेड ताराबाई कैरेक्टर इन सीरियल लाइक छावा. शी ऑल्सो प्लेड.
1: हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिट्सो का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं. भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है. मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला है. मेरी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है. मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है. फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है. लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है. ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं. इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इंडिया ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं. हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके. फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी. मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है. एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है. हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए. हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी. आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है. मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं. सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है. हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज

0: एयर इंडिया क्रैश को लेके इंटरिम स्टेटमेंट आया, लोगों को लग रहा है
1: तुम्हारा हाल का भी कुछ
0: अभी तक जवाब नहीं मिल पा रहे।
2: एक चीज मैं पहले भी बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस काफी प्रोटोकॉल बद्ध है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को देखते हुए वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की होती है, और उसके बाद ये बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन है। तो हमारे एआईबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी चाहती है कि हर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सही तरह से फॉलो करें, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल वे में ये इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो, और एक प्रयास तो उनका भी है कि जितना जल्दी हो सके हो, बट क्योंकि एक तरह से जो प्रोसेस है उसको कहीं पे हम स्किप नहीं कर सकते और कहीं उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, तो उसके तहत वो प्रोसेस पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि वो लास्ट लेग में है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो फाइनल रिपोर्ट भी उसको पेश करें।
3: So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action, the strength of your country, and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
4: Innovation. साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है, एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है।

0: ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते तो क्या फिर भी आप ये सोचते कि आप अलग होंगे?
1: तो तीन बार बना था भाई, ये चौथा बार बन जाता,
0: तब भी आप अलग हो जाते?
1: क्या
0: तब भी आप अलग हो जाते जो आज
1: तो
0: आप
1: आगे कैसे बताएगा? ओपोजिशन आता तो बोलता, ओपोजिशन आया नहीं, उसको पहले ही भगा दिया हम लोग, जनता भगा दिया। हाटो साला तुम लोग, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट फिटेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल, गो एट। जैसे ज्योति बोस लोग सीपीएम को हटाया, हम लोग को फिर हटा दिया।
0: क्या अब आगे का क्या, आगे क्या आप एनडीए को समर्थन कर रहे हैं?
1: हम लोग कोशिश करेगा पब्लिक का काम कैसे किया जाएगा, इसीलिए हम चाहता है ज्वाइंट सरकार, दोनों इंजन क्या काम करता है, सेंट्रल
0: इंस्टीट्यूट। कितने सांसद आप लोग साथ में?
1: क्या
0: कितने सांसद, कितने लोग, कितने सांसद एक साथ में?
1: अभी हम लोग को साथ में
0: बाबू मोहित्रा भी है,
1: सब है यार,
0: बाबू मोहित्रा भी इस तरफ
1: सब सपोर्ट,
0: शत्रुघ्न सिन्हा,
1: अरे सब सपोर्ट करेगा, कहाँ जाएगा ये लोग, ये लोग तो टीएमसी है ना, हम लोग तो टीएमसी है, ये लोग तो बाद में टीएमसी, हम लोग पहले का टीएमसी।

0: I'm not going to stand here and pretend that there are no benefits of social media. That wouldn't be straight or honest. But having looked at the evidence, having gone through the consultation, having looked at what happened in other countries, having listened to parents, grieving parents, listened hard, and you can listen in two ways. You can listen in the sense of you're just going through the motions, or you can listen and you can take in what people are saying to you. I'm in the second category, always have been, and that's why I'm absolutely clear in my mind that this ban is the right outcome. And I think we're going to see parents across the country welcome it. I accept not all. There's always a debate here. Not everybody is in the same place. But I do genuinely believe the vast majority of parents will welcome the clear and decisive step that we've taken today.
1: Air India crash को लेके interim statement आया है, लोगों को लग रहा है
2: तुम्हारा हाल का भी कुछ
1: अभी तक जवाब नहीं मिल पा रहा।
3: एक चीज मैं पहले भी बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस काफी प्रोटोकॉल बद्ध है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को देखते हुए वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की होती है, और उसके बाद ये बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन है। तो हमारे एआईबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी चाहती है कि हर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सही तरह से फॉलो करें, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल वे में ये इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो, और एक प्रयास तो उनका भी है कि जितना जल्दी हो सके हो, बट क्योंकि एक तरह से जो प्रोसेस है उसको कहीं पे हम स्किप नहीं कर सकते और कहीं उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, तो उसके तहत वो प्रोसेस पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि वो लास्ट लेग में है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो फाइनल रिपोर्ट भी उसको पेश करें।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है, ये कानून के विपरीत है।
1: मुलाकात हुई कि नहीं हुई?
0: इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कराए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं।

0: हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, और इस सिलसिले में हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब और हमारे पूरे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स मेंबर्स सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि कल की जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई बहुत कामयाब रही। और तीसरी बात यह है कि हम पार्टी हमारे अलायंस करने तैयार है बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए, मगर ऐसा अलायंस हो जिसमें बराबरी हो और इज्जत से हमको देखा जाएगा, तो फिर हम लोग बराबर उस पर कोशिश करेंगे।
1: क्या बहुजन समाज पार्टी से बातचीत होगी, समाजवादी पार्टी से बातचीत होगी?
0: नहीं, ऐसा तो बहुत जल्दी होगा, किससे अलायंस होगा, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। अब देखिए क्या होता है तो वक्त ही बताएगा।
2: So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: No.
4: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh, my God.
3: It's got to be deliciously desperate.
4: Why do these girls forget her?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
3: Boo bloody.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: Un gaybo, unko koi kuch nahi bolta. Aur Asaduddin Owaisi aapke haq ke liye, aapki siyasi leadership ke liye aa raha hai. To in sab ko dar lagta hai. Darna padega tumko aap.
8: बनर्जी से अलग हो गए हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते तो क्या फिर भी आप ये सोचते कि आप अलग होंगे?
9: तो तीन बार बना था भाई, ये चौथा बार बन जाता,
8: तब भी आप अलग हो जाते
9: क्या?
8: तब भी आप अलग हो जाते जो आज आप?
9: अभी कैसे बताएगा? ओपोजिशन आता तो बोलता, ओपोजिशन आया नहीं, उसका पहले ही भगा दिया, उनको जनता भगा दिया। हाटो साला तुम लोग, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट फिटेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल, गो एट। जैसे ज्योति बोसी लोग सीपीएम को हटाया, हम लोग को फिर हटा दिया।
8: क्या अब आगे का क्या? आगे क्या आप एनडीए को समर्थन कर रहे हैं?
9: हम लोग कोशिश करेगा पब्लिक का काम कैसे किया जाएगा, इसीलिए हम चाहता है ज्वाइंट सरकार, दोनों इंजन क्या काम करता है, सेंट्रल
8: इंस्टीट्यूट। कितने सांसद आप लोग साथ में?
9: क्या
8: कितने सांसद, कितने लोग, कितने सांसद एक साथ में?
9: अभी हम लोग को साथ में
8: बहु मित्र भी है,
9: सब है यार,
8: बहु मित्र भी इस तरह
9: सब सपोर्ट,
8: शत्रुघ्न सिन्हा,
9: अरे सब सपोर्ट करेगा, कहाँ जाएगा ये लोग? ये लोग तो टीएमसी है ना, तो हम लोग तो टीएमसी है, ये लोग तो बाद में टीएमसी, हम लोग पहले का टीएमसी।